0: प्रोडक्टहरु कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोटोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

अनि एडिक्सन एचआईभी हेपाटाइटिस को फेटल इन्फेक्सन म यस्तो छु म त्यस्तो छु जस्तो सुकै भए पनि दामी छु चारैतिर म नामी छु।

0: कोकोनट कोकोनट भिटा मिल्क बटर पैक क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

0: कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फैट क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोकोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

बैठक असार 11 गते बिहान 11 बजे बेसनाकैकन बैठक स्थगित गर्लक हो। सरकारसे संघीय संसदको चालू अधिवेशन शुरू हुनासे अगाडि 8 अध्यादेश आनरल रह। यी अध्यादेश अधिवेशन शुरू हुनका दिन गत 28 वैशाखमा प्रतिनिधि सभा हो राष्ट्रिय सभामा पेश हुल रह। यी मध्ये 400 अध्यादेश आज प्रतिनिधि सभाको स्वीकृत गर्लक हो। संसदको अधिवेशन निरलक बेला सरकारसे संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार ओ कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश सार्वजनिक पदाधिकारीका पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश सार्वजनिक खरिद द्वासर संशोधन अध्यादेश विश्वविद्यालय सम्बन्धी कुछ नेपाल एनहन संशोधन कर बन्लक अध्यादेश आनल रह। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी कुछ नेपाल एनहन संशोधन गर्न अध्यादेश सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तेसर संशोधन अध्यादेश सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश ओ कुछु नेपाल एनहन संशोधन कर बन्लक अध्यादेश पे यह बेला आनल रह। हुठा आजुक थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंजाफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने भाटी अखसक खबर मशेष समाचार कक्ष कसकको संग्रहसँग मैं शालिक राम चौधरी विदाहिटु रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़ने, नसा, प्रसूति।

बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायनेट अब सब कनेक्टेड।

6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ।

0: छोरी यहाँ दिनदिनै बढिरहेछ, कसैलाई केही मतलबै छैन।
1: नाटकले राखेर मैले के पाउँछु?
2: स्वर्गद्वारी चलचित्र मन्दिर घोराही दाङमा भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र आई एम जित बहादुर।
1: जित बहादुर
3: भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
2: साथै स्वर्गद्वारी चलचित्र मन्दिर घोराही दाङमै भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ हिन्दी कथानक चलचित्र ककटेल टू।
3: कहानियां सुन सुन के हम पक जात, लेकिन प्यार
2: एक पटक अवश्य हेर्नुहोस्।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए।